सुप्रभातम बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार, श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीय 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्योदय हुआ है 5:39 पर और सूर्यास्त होगा 7:05 पर। प्यारे श्रोताओं, आज के दिन हमारे देश में मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज के दिन है हरियाली तीज।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक्षा करें।
1: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
2: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अप।

FM 90.0 MHz रेडियो विस्ता के सभी सुनने वालों को देश विदेश में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन दिवस पर आइए मैं आपको देशभक्ति के गीत सुनाता हूँ।

कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है।

FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो मितस्ता के सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हर्षो उल्लास से हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, रेडियो मितस्ता परिवार की ओर से इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड कॉन्ग्रेचुलेशन।

ये बात हवाओं को भी बताए रखना, ये बात हवाओं को भी बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को भी जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। वंदे।

0: काल के।
1: दृढ़ता हो लोह पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज मिले, आजाद के जैसे हस्ती हो, उद्धम सिंह का उद्धम दिल बिस्मिल, मंगल पांडे का ताव मिले, हे ईश्वर जन्म दोबारा दो तो भारत माँ की छाव मिले, तो भारत माँ की छाव मिले।
2: जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का पर। आज हम आपको देश प्रेम के गीत सुनाएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज पर।

0: जी हाँ, आइए आपको सुनाते हैं भूतपूर्व वायु सैनिक और हमारे दोस्त श्री अजयपाल सिंह जी का वॉइस नोट, जो देशवासियों के नाम संदेश है।
1: ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी,

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं अजय पाल सिंह, भारतीय वायुसेना का एक पूर्व वायु सैनिक, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रेडियो वितस्ता 90.0 FM के माध्यम से अपने विचार आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए मैं कार्यक्रम समन्वयक श्री भारत सुपारी जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपसे केवल एक सरल सा संदेश साझा करना चाहता हूँ। जीवन में आप जो भी कार्य करें, उसे पूरे मन, पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से करें। जब हम अपने कर्म को पूजा मानकर कार्य करते हैं, तब सफलता केवल एक संभावना नहीं रहती, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। हम सभी का प्रयास ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा घर सुखी रहे, हमारा शहर प्रगतिशील बने और हमारा देश समृद्ध एवं सशक्त हो। राष्ट्रीय निर्माण बड़े बड़े कार्यों से नहीं, बल्कि हर नागरिक के छोटे छोटे अच्छे कर्मों से होता है। मेरे युवा साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। अच्छे संस्कार, ईमानदारी, अनुशासन और परिश्रम ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आइए हम संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे और अपने भारत को विकास, एकता और खुशहाली की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।
1: 15 अगस्त हर साल आता है और हमारे दिलो दिमाग में ये भाव जागृत करके चला जाता है कि हम आजाद हैं और आजाद रहेंगे। ये पर्व सबके दिलों में देश प्रेम की हलचल पैदा कर जाता है। भारत की ओर भारत माता स्वतंत्र सत्ता के लिए कर्तव्य का भाव जगा जाता है। आइए सुनते हैं एक देश प्रेम गीत।
2: जी हाँ, गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं वॉइस नोट आरजे शेरे का देशवासियों के नाम।
3: नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आरजे शेरी, रेडियो वितस्ता सुनने वाले श्रोताओं को और समस्त भारतवासियों को आजादी की शुभकामनाएं देता हूं और ये गीत सुनने की फरमाइश करता हूं।

0: दोस्तों, 15 अगस्त 1947, ये वो दिन है जब हमारे देश को अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आजादी मिली थी। ब्रिटिश राज में देश की जनता पर काफी जुल्म किए गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जुल्मों से छुटकारा दिलाने के लिए सैकड़ों फ्रीडम फाइटर्स ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये दिन उन सब महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का भी है, जिन्होंने देश की आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, फांसी चढ़ गए और सीने पर गोली खाई। हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं, जो मिट गए देश पर हम उन्हें सलाम करते हैं। सभी शहीदों को भावपूर्वक नमन और श्रद्धांजलि देते हैं।
1: जी हाँ, वॉइस नोट्स का सिलसिला तो जारी है। आइए आपको ले चलते हैं अंबाला सिटी, जहां से हमारे पास वॉइस नोट आया है सिया शर्मा का। आइए सुनते हैं सिया क्या कहती है।
2: फ्रीडम इन माइंड, फेथ इन वर्ड्स, प्राइड इन आवर सोल्स। अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो विथेस्टा एंड पीपल लिविंग इन दिस कंट्री। टुडे आई सिया शर्मा, स्टूडेंट ऑफ पीकेआर जैन वाटिका, is delighted to congratulate you all on this auspicious occasion of Independence Day. The song I would prefer to listen today, which will make the inner patriot in me relive, would be

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। आप सुन रहे हैं देश प्रेम के गीत और हमारे श्रोताओं के देशवासियों के नाम बधाई संदेश। आइए सुनते हैं अब मानिया शर्मा अंबाला सिटी से, जो 10 साल की है, 5वीं कक्षा में पढ़ती है। देखिए क्या संदेश लेके आई है।
1: गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। नमस्कार, मैं मान्या, मुरलीधर डीएवी की छात्रा, आप सभी रेडियो वितस्ता के दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस पर बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इस उपलक्ष में मैं जो गीत सुनना चाहूंगी उसका नाम है ऐ वतन मुझको तेरी कसम, तेरी राहों में जान तक लुटा जाएंगे। विशिंग यू ऑल द व्यूअर्स ऑफ रेडियो वितस्ता अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।

भारत की रक्षा के वादे और कसम के साथ चलो हम सब आजादी के इस महोत्सव में डूब जाते हैं। न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी है, कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी है।

0: मेरे और FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता के श्रोताओं और देश विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: हमारा तिरंगा, हमारी शान। भारत में तिरंगे का अर्थ है राष्ट्रीय ध्वज, जिसमें तीन रंग की क्षितिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। ये तीनों समानुपात में है और इसके साथ बीच में अशोक चक्र। किरणी, आप क्या कहती हैं?
2: प्यारे देशवासियों, दुनिया में एकमात्र भारतीय संस्कृति ही है जहां बचपन से ही सिखाया जाता है जन्म देने वाली माँ और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। ये हमारी आस्था और मातृत्व शरण में विश्वास रखने वाली हमारी सांस्कृतिक विशेषता है। इश्क तो करता है हर कोई महबूब पे, तो मरता है हर कोई। इश्क तो करता है हर कोई महबूब पे, तो मरता है हर कोई। कभी वतन को महबूब बना के देखो, तुझ पे मरेगा हर कोई।

जाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत

0: आपने ट्यूनिंग किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। हमें खुशी है कि आज FM 90.0 MHz एक माध्यम बना आपके और देशवासियों के बीच शुभकामनाएं साझा करने हेतु। आइए आपको एक कविता सुनाता हूं। कविता है दुनिया और हमारे देश में फर्क। मेरी मिट्टी मेरा देश मेरा स्वर्ग है यही, दुनिया और मेरे देश में फर्क है यही। सोने जैसा गेहूं और चांदी जैसा धान, हर मौसम मिल जाते यहां है, इसकी है पहचान। पतझड़ सावन बरखा सर्द है यही, दुनिया और मेरे देश में फर्क है यही। हिंदू मुस्लिम सिख हैं और कौम के लोग, एक दूजे से नफरत के नहीं पालते हैं रोग। भाईचारा समेट चले फर्ज है यही, दुनिया और मेरे देश में फर्क है यही। कल कल बहती नदियां और लहराते हैं खेत, छम छम छम बारिश में खूब मोर नाचे रे। कोई बिछड़ न जाए हमसे दर्द है यही, दुनिया और मेरे देश में फर्क है यही। ये पंक्तियां लिखी है विशाल कुमार दुसिया जी ने। आइए आगे चलते हैं और आपको सुनाते हैं एक वॉइस नोट जो हमारे पास भेजा है देवदत्त शर्मा जी ने।
1: मैं देवदत्त शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार एवं छायाकार अंबाला, FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का श्रोताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। रेडियो वितस्ता परिवार दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करे, हमारी यही शुभकामनाएं। जय हिंद।
2: ब्रिटिश द्वारा गुलाम रहने के बाद जब भारत ने आजादी की तरफ कदम बढ़ाया, पूरे देश में एक झंडे ने एकता की लहर पैदा की, जिसने लोगों में भाईचारा को बढ़ावा देने के सफल कार्य किया। कई बदलाव से गुजरने के बाद 22 जुलाई 1947 को भारत का वर्तमान झंडा मिला और उसको सबने अपनाया। इस पर्व पर राष्ट्रध्वज को नमन करें, जो देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है और नागरिकों के सम्मान और गौरव का भी प्रतीक है। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना।

कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है।

FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हर्षोल्लास से हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। वंदे मातर।

0: जी हाँ, आज हमारा देश आजाद है, हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, देश उन्नति पर है, बहुत सारी योजनाएं लागू हैं जिससे देशवासियों को बेहद लाभ हुआ है, जिसमें खास तौर पर सरकारी काम का ऑनलाइन होना या यूपीआई पेमेंट्स का चलन बढ़ना और बहुत सारी। देश की आजादी का श्रेय जाता है उन वीरों को जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, अपने प्राणों की आहुति दे दी, या जो हमारे सीमाओं के प्रहरी हैं। हम चैन से सोते हैं क्योंकि वो सीमा के प्रहरी हैं, और उन सभी वीरों को भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही नमन उन शहीदों का जिनकी वजह से हम आज आजाद हैं।
1: जिस देश का कण कण सोना है, जिस देश की नारी देवी है, जिस देश में गंगा बहती है, उस देश को भारत कहते हैं। जहां भाईचारे का नियम है, जात पात का भेद नहीं है, उस देश को भारत कहते हैं। जहां नब से भू का नाता है, जहां धरा हमारी माता है, जहां सत्य धर्म मन बाता है, उस देश को भारत कहते हैं। नफरत बुरी ना पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये सबका वतन है, संभालो इसे। मेरा

0: प्रोग्राम की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आओ आजादी के इस पर्व में अखंड भारत का नारा बुलंद करते हैं। अनेकता में एकता वाले मेरे देश व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम का अंत मैं कुछ लाइन्स के साथ करूंगी। उन्नति पथ पर चक्र अनवरत चलता हुआ ना ठहरे, फर फर करता शुभ गगन में सदा तिरंगा लहरे, सदा तिरंगा लहरे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: जी हाँ, हमें आशा है कि आपको ये हमारी आज की प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 7056413010 पर। मुझे दीजिए इजाजत एक बार फिर हमारी ओर से, मेरी ओर से, किरणी की ओर से और समस्त रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से, वेब थिएटर ग्रुप परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: लेफ्ट राइट डिबरी टाइट।

0: हवा में जब तिरंगा लहराता है तो सिर्फ रंग नहीं देश का गौरव सर्वोच्च शिखर पर दिखाई देता है। हर दिल में उमंग, हर आंख में गर्व, ये सिर्फ एक ध्वज नहीं, हमारी पहचान, हमारा स्वाभिमान, हमारी शान है हमारा तिरंगा।
1: एक तिरंगा, करोड़ों दिलों की एक पहचान। आइए संकल्प लें, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा। आजादी के अमृत काल में हरियाणा सरकार का आह्वान है, हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ें और देशभक्ति के इस उत्सव के सहभागी बनें।
0: अपने घर को देशभक्ति के रंगों से सजाइए, तिरंगा फहराइए, गर्व से लहराइए और इस बार अपने घर को बनाइए देश के सम्मान का प्रतीक। आइए मिलकर मनाएं हर घर तिरंगा अभियान।

नमस्कार, रेडियो वितस्ता के सभी प्यारे श्रोताओं को अनु की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आप सभी के लिए कुछ विशेष पंक्तियां। स्वतंत्रता की वेदी पर जिन्होंने प्राण गंवाए हैं, उन वीर शहीदों को हम सबने नमन के पुष्प चढ़ाए हैं। गूंज रहा है कोने कोने में देशभक्ति का है तराना, आओ मिलकर वतन की शान में यह पर्व मनाना। आइए आज के दिन हम सब मिलकर अपने देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए अपना योगदान देने का संकल्प लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़। हम सफर जिंदगी का। जय हिंद, भारत माता की जय।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं पोर्टल में नुकसान मानता हूँ, मौसम परिवर्तन का यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ ना कुछ भरपाई होगी जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरणी और आप सुन रहे हैं किरणी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। आज का टॉपिक है माँ बाप जिंदगी के असली हीरो। एक ऐसा शो जो हमारे माँ बाप की अहमियत, उनके बलिदान और हमारे रिश्ते को मजबूत बनाने के तरीकों पर रोशनी डालेगा। अगर आज हम यहाँ हैं तो सिर्फ उन्हीं की वजह से, उनकी मेहनत, उनका प्यार और उनका हर दिन का दिया हुआ बलिदान। तो चलिए आज बात करते हैं उन्हीं के बारे में।

माँ बाप एक अनमोल तोहफा है। जिंदगी में कई लोग आते हैं, लेकिन माँ बाप वो है जो बिना किसी स्वार्थ के हमसे प्यार करते हैं। उनका प्यार कभी शब्दों से बयान नहीं हो सकता। छोटी छोटी बातें जो वो हमारे लिए करते हैं, उनका एहसास तब होता है जब हम खुद जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने लगते हैं। बचपन में जब हम स्कूल जाने के लिए तैयार होते थे तो माँ हमेशा हमारे कपड़े, टिफिन और होमवर्क की टेंशन लेती थी, और जब हम थोड़े बड़े हुए तो पापा ने हमारी हर जरूरत बिना कहे पूरी की। कभी फीस भरने के लिए अपनी खुद की ख्वाहिशें छोड़ दी, तो कभी रात भर जाकर सिर्फ ये देखा कि हम चैन से सो रहे हैं या नहीं, क्या आज हम उनके लिए इतना ही कर रहे हैं। माँ बाप का प्यार बिना शर्तों का होता है, बस हमें समझना है कि उनके होने का मतलब सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक अनमोल तोहफा है। आज के जमाने में माँ बाप की स्ट्रगल्स, बदलते वक्त के साथ माँ बाप के चैलेंजेस भी बदल गए हैं। पहले उनका ध्यान सिर्फ हमारी पढ़ाई, करियर और शादी तक होता था, लेकिन आज के डिजिटल युग में एक और नया चैलेंज है, इमोशनल गैप। कई बार हम अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनसे बात तक नहीं करते। माँ बाप जो आजकल के जमाने में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इमोशनल डिस्टेंस, हम उनसे बात करने का वक्त नहीं निकालते और वो चुपचाप सब बर्दाश्त करते हैं। नए गैजेट्स और एप्स समझना उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन हम कभी पेशेंस से उन्हें सीखने के लिए वक्त नहीं देते। अकेलेपन का एहसास, हम अपनी दुनिया में बिजी हैं और वो किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते। सोचिए, पहले माँ दिन भर हमारे साथ थी, हर बात जानने की कोशिश करती थी, आज जब उन्हें हमारी जरूरत है तो क्या हम उतना ही वक्त उनके साथ बिताते हैं। पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट सिर्फ एक मोबाइल फोन या पैसा नहीं बल्कि हमारा वक्त और प्यार है। माँ बाप से रिश्ते को मजबूत कैसे बनाएं? अगर हम अपनी जिंदगी में माँ बाप को असली हीरो मानते हैं तो हमें कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए जो उनके दिल को सुकून दे सकते हैं। रोज एक बार उनसे बात करें बिना किसी काम के, सिर्फ आप कैसे हो पूछना भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता है। टीवी या फोन के बिना सिर्फ एक नॉर्मल डिनर या छोटी सी चाय की बैठक भी रिश्तों को मजबूत बना सकती है। कभी उनके लिए उनकी पसंद का खाना बना दे या उनके पुराने दोस्तों से मिलाने का इंतजाम कर दे। उनको नया गैजेट्स और ऐप सीखने में मदद करें ताकि वो भी आज की दुनिया से जुड़ सके। मुझे एक कहानी याद आती है, एक बेटा जो रोज अपनी माँ से सिर्फ 5 मिनट बात करता था, लेकिन माँ हर दिन सिर्फ उसके इस 5 मिनट का इंतजार करती थी। कभी कभी सिर्फ थोड़ा सा वक्त किसी के लिए एक पूरी दुनिया के बराबर होता है। दोस्तों, माँ बाप सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक दौलत है जो हर किसी के पास नहीं होती। अगर आज उनकी सेहत ठीक है, वो हमारे साथ है, तो ये सोचना जरूरी है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। आज का एपिसोड सिर्फ एक याद दिलाने वाली बात थी कि जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, हम उनके साथ कितना वक्त बिता रहे हैं। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो सिर्फ एक काम करें, अपने माँ बाप को एक कॉल करें, उनसे बिना किसी वजह के बात करें और बस ये कहें कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं हूँ किरणी और आपसे विदा लेती हूँ इस एपिसोड के साथ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए सोच और नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए अपने माँ बाप के साथ वक्त बिताएं और उन्हें बताएं कि वो कितने स्पेशल है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मिट्टी की खुशबू में हिंदुस्तान है, तिरंगे में बसा हर हिंदुस्तानी का अभिमान है। आजादी हमें विरासत में मिली है, इसे संजो कर रखना हमारा सम्मान है। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आइए इस दिन सिर्फ जश्न ही नहीं बल्कि अपने देश के प्रति प्रेम, एकता और जिम्मेदारी का संकल्प भी लें। सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।

पर्वतों के पेड़ों पर शाम के साए हैं, कहीं से मौसम पिघलने की आहट है और खुशबू में सिमटी हैं धड़कने। रात भीगते भीगते गुजर गई तुम्हारे ही तसव्वुर में, रात भीगते भीगते गुजर गई तुम्हारे ही तसव्वुर में, पर मुड़ के नहीं देखा तुमने बीते मौसम की तरह, मुड़ के नहीं देखा तुमने बीते मौसम की तरह।

कोई अब इन रास्तों से गुजरता क्यों नहीं? सफर तवील होने के बावजूद तुम नजरों से ओझल होते गए और दूर इन सहराओं में आंधियां थी, गर्दो गुबार के जजीरों के सिवा कुछ नहीं नजर आया। फिर भी उम्मीद बंधी रही, शायद एक परछाई लिपट जाए मुख्तसर सी जिंदगी के साथ, सिर्फ एक बात करके।

आसमानों में रहती हो, इसीलिए शायद मेरी आरज़ू से खेलते हो, मेरी मासूमियत पर मुस्कुराते हो। क़यामत तक साथ निभाएंगे और हमारे तुम्हारे इन रिश्तों को मजबूत डोर से बांधेंगे। इन्हीं आसमानों में जा बसेंगे, बनाएंगे अपना आशियाना, पर यह हो न सका। खुद तो निकल गए और हमें यहां छोड़ आए इन तन्हा हवाओं के संग।

आसमानों में जा बसी हो, तितलियों के संग हवाओं में तैरती हो, परिंदों की उड़ान नाप लेते हो, सितारों को छू लेते हो। मोहब्बत बांटते हो और इन तैरते बादलों में गुम हो जाते हो। चुपचाप इशारों ही इशारों

असर अब रहा नहीं, वरना सजदों में खुदा को तलाशना क्या मुमकिन नहीं होता। सहमे सहमे बुझे बुझे से ये उदास चेहरे इबादत में मसरूफ, इन्हें ही रोशनियों का इंतजार, क्योंकि अब यह अंधेरों से निकल आए एक नए कारवां में शामिल होने के लिए।

तेज बहती धाराओं से गुजरकर इन रास्तों पे तुम मेरा एहसास हो। ख्वाहिशों की परवाज लिए बुलंदियों को छूना एक ख्वाब की तरह दिल में पलता रहा। काश हम तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें कोहसारों के उस पार ले जाते जहां मोहब्बतें रवा दवा है, जहां खुशबू है प्यार की और बदलते हैं मौसम।

पर्वतों के पेड़ों पर शाम के साए हैं, कहीं से मौसम पिघलने की आहट है और खुशबू में

गूंज रहा है जग में भारत का नगमा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा यह तिरंगा हमारा। आप सभी श्रोताओं को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाइयाँ। मैं कृष्णा रेडियो वितरस्ता की पूरी टीम की ओर से आप सभी के सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आइए आज के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर उन अमर शहीदों और वीर जवानों को नमन करें जिनके त्याग और बलिदान की बदौलत आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। आवाज की हर तरंग से हम देश का मान बढ़ाएंगे। रेडियो वितरस्ता के संग हर दिल में देशभक्ति का अलख जगाएंगे। लहराएगा तिरंगा आजादी के तरानों के साथ, लहराएगा तिरंगा आजादी के तरानों के साथ। जुड़े रहिए रेडियो वितरस्ता पर एक नए विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत।

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: हवा में जब तिरंगा लहराता है तो सिर्फ रंग नहीं देश का गौरव सर्वोच्च शिखर पर दिखाई देता है। हर दिल में उमंग, हर आंख में गर्व, ये सिर्फ एक ध्वज नहीं, हमारी पहचान, हमारा स्वाभिमान, हमारी शान है हमारा तिरंगा।
2: एक तिरंगा, करोड़ों दिलों की एक पहचान। आइए संकल्प लें, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा। आजादी के अमृत काल में हरियाणा सरकार का आह्वान है, हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ें और देशभक्ति के इस उत्सव के सहभागी बनें।
1: अपने घर को देशभक्ति के रंगों से सजाइए, तिरंगा फहराइए, गर्व से लहराइए और इस बार अपने घर को बनाइए देश के सम्मान का प्रतीक। आइए मिलकर मनाएं हर घर तिरंगा अभियान।

कहे रही संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसोटी जे कसे, सोई सांची मीत। सुविख्यात कवि रहीम दास द्वारा रचित ये दोहा हम सबने आज तक सुना भी है और पढ़ा भी है। इस दोहे के माध्यम से कवि हमसे कहता है, जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तब उसके अनेक सगे संबंधी तथा मित्र बनते हैं, उसके समीप आते हैं, पर विपत्ति के समय में जो आपका साथ दे वही सच्चा मित्र है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज एक नया कार्यक्रम लेके आया हूं और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे दोस्ती की, दोस्तों की, और जिंदगी में हमारे दोस्तों का क्या महत्व है। आज का ये कार्यक्रम मैं अपने सभी दोस्तों को समर्पित कर रहा हूं, जो दोस्त हमारे साथ हैं और जो दोस्त हमारे साथ अब नहीं है। मैं ये कहूंगा कि दोस्ती और दोस्त ये भगवान ने पहले ही निर्धारित किए होते हैं। बिना दोस्तों के और बिना दोस्ती के जिंदगी अधूरी है। दोस्तों पर इतना निर्भर इंसान होता है शायद अपने सगे संबंधियों पर भी नहीं। कुछ दोस्त जिंदगी में छूट जाते हैं, कुछ दोस्त जिंदगी में थोड़े समय के लिए आते हैं, पर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो जिंदगी पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। दोस्ती एक पूजा है और पूजा ही दोस्ती है। दोस्ती एक प्रार्थना है। दोस्त एक साथी है और उसका साथ रहना ही दोस्ती कहा जाता है। अंग्रेजी में भी कहते हैं, ए फ्रेंड इन ए नीड इज फ्रेंड इन डीड।

व्यक्ति को प्रत्येक रिश्ता अपने जन्म से ही प्राप्त होता है। अन्य शब्दों में कहें तो ईश्वर पहले से ही बना के देता है, पर दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जिसका चुनाव व्यक्ति स्वयं करता है। सच्ची मित्रता रंग रूप नहीं देखता, जात पात नहीं देखता, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी तथा इसी प्रकार के किसी भी भेदभाव का खंडन करती है। आमतौर पर यह समझा जाता है मित्रता हम उम्र के मध्य होती है, पर यह गलत है। मित्रता किसी भी उम्र और किसी के साथ भी हो सकती है। व्यक्ति के जन्म के बाद से ही वो अपनों के मध्य रहता है, खेलता है, उनसे सीखता है, पर हर बार व्यक्ति हर किसी से साझा नहीं कर सकता। व्यक्ति का सच्चा मित्र ही उसके प्रत्येक राज को जानता है। पुस्तक ज्ञान की कुंजी है, तो एक सच्चा मित्र पूरी पुस्तकालय जैसा है, जो हमें समय समय पर जीवन के कठिनाइयों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्णय में दोस्तों की मुख्य भूमिका होती है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति स्वयं जैसा होता है, वो अपने जीवन में दोस्त भी वैसा ही चुनता है, और व्यक्ति से कुछ गलत होता है तो समाज उसके दोस्तों को भी सम्मान रूप से उस गलती का भागीदार समझता है।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती और दोस्तों पर, जहां लोग आपसे बात भी अपने स्वार्थ सिद्ध के मनोकामना से करते हैं। ऐसे में सच्ची मित्रता भी बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। प्राचीन समय से ही लोग अपनी इच्छाओं व आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दोस्ती करते थे तथा अपना कार्य हो जाने पर अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को दोस्ती का हाथ हमेशा सोच समझकर अन्य की ओर बढ़ाना चाहिए। व्यक्ति अपना सुख दुख तथा हर तरह की बात जिसे बांट सके वो व्यक्ति का मित्र होता है। मित्रता जीवन के किसी भी पड़ाव में आकर तथा किसी से भी हो सकता है। एक पिता अपने पुत्र का मित्र हो सकता है, इसी तरह माँ बेटे में मित्रता हो सकती है, पति पत्नी में भी मित्रता हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि हम उम्र के लोगों के मध्य ही मित्रता हो। सच्ची दोस्ती व्यक्ति को सदैव सही मार्ग दिखाती है। नुक्ताचीनी को मित्रता कहना अनुचित होगा। परिवार के बाद दोस्त व्यक्ति की दूसरी प्राथमिकता होती है, जिसके साथ वो हर अच्छे बुरे पलों को व्यतीत करता है। सुविख्यात कवि रहीमदास द्वारा एक चर्चित दोहा में कहा गया, टूटे सुजन मनाए जो टूटे सो बार, रहमन फिर पाए टूटे मुक्तहा। मतलब, सच्चे मित्र जितनी बार आपसे रूठे उन्हें मना लेना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जैसे मोतियों की माला के टूट के बिखर जाने पर हम उन्हें बार बार पिरोते हैं क्योंकि वो मूल्यवान है, ठीक उसी प्रकार सच्चे मित्र भी मूल्यवान होते हैं और उन्हें नहीं खोना चाहिए। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मित्रता का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन में भी है। मेरे मित्रों का समूह मेरे लिए दूसरे परिवार जैसा है। जीवन में व्यक्ति जिन आदतों को वाहन करता है वो मित्रता की ही देन होती है। व्यक्ति के घर से निकलने पर पहली आवश्यकता मित्र होते हैं। सबसे पहले व्यक्ति मित्र बनाने की होड़ में लग जाता है, क्योंकि मानव सामाजिक प्राणी है तथा वो अकेले नहीं रह सकता। पर यह कितनी गंभीर बात है, हम अपने लिए कोई जानवर भी लाते हैं तो उनके तहकीकात करके लाते हैं, पर हम मित्र बनाने में इतना समय नहीं लगाते, जबकि मित्रता व्यक्ति का पतन भी कर सकता है और व्यक्ति को कामयाबी के उच्च शिखर तक भी पहुंचा सकता है। ज्यादातर हम व्यक्ति को अपना मित्र बनाने से पहले उसके हाव भाव तथा उसका हंसमुख चेहरा ही देखते हैं, जो संकट में हमारे काम नहीं आता। यहां पर मेरा एक व्यक्तिगत कहना है कि अगर आपसे दोस्त रूठ जाए या आप उनसे रूठ जाए तो जितना जल्दी हो सके आप उनको मना लें, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, वो इतना दूर चला जाए कि आप उनसे कोई संवाद ही ना कर सके। इसलिए कहा गया है, तेरे जैसा यार कहां।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती और दोस्तों पर। जीवन में लोगों के अनेक दोस्त बनते हैं, बचपन के दोस्त, स्कूल कॉलेज के दोस्त, व्यावसायिक दोस्त, मतलब टाइम पास के दोस्त आदि। इनमें से कुछ वक्त गुजारने के साथ पीछे छूट जाते हैं और कुछ जीवन भर आपके हर अच्छे बुरे परिस्थितियों में आपके साथ रहते हैं। अपनी परेशानी की बात अपने दोस्तों को बताने से निश्चय ही मन का भार कम होता है तथा मित्रता व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। मित्रता जीवन को रोमांच से भर देता है। मित्र के होने पर व्यक्ति खुद को अकेला महसूस नहीं करता तथा सच्चा मित्र बिना विचार किए ही आपके संकट में देख मदद के लिए आगे आता है। वरन लोग तो बहुत हैं जो कहते नहीं थकते हम आपके मित्र हैं। शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद कृष्ण द्वारकाधीश बने तथा सुदामा एक गरीब ब्राह्मण ही रहे, फिर भी विपत्ति पड़ने पर कृष्ण ने दोस्ती का फर्ज निभाया और सुदामा के सारे दुख दूर कर दिए। कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के रिश्ता निभाते हैं, शायद वो लोग दोस्त कहलाते हैं। दोस्ती प्यार का दूसरा रूप है। दोस्ती एक भाव है। हम सभी के जीवन में एक दो या इससे भी अधिक दोस्त होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका कोई दोस्त ना हो। आपस में व्यवहार मिलने पर बहुत कम समय में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर यह भी महत्व नहीं रखता कि हम उस व्यक्ति से कभी मिले हैं या नहीं। व्यक्ति समस्या अपने परिवार के साथ भी बांट नहीं पाता है। वो मित्रता में दोस्तों को बड़े आराम से बता देता है, जिसके साथ हम जीवन के उत्साह, हर्ष, उल्लास, खुशी तथा शोक के बिना किसी तोड़ मरोड़ के साथ बांट सकते हैं। वही व्यक्ति का सच्चा मित्र है। मित्र हमें हर बुरे कार्यों से बचाता है तथा जीवन के हर कठिनाई में हमारे साथ रहता है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ चाहता है। मुझे आशा है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 9416013010 पर दे सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुमूल्य है। आप सब अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

पेश है कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए जरा याद करो कुर्बानी, रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, प्रस्तुत करेंगे नरेश शर्मा, एडिट व निर्देशन भारत सपोरी।

0: नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। सबसे बड़ा त्याग क्या है? अपने आप को ही नछावर कर देना। और ये त्याग किया है दोस्तों आपने, क्योंकि आपके कारण ही तो हम चैन की नींद सोते हैं। सरहदों पर आपके होते हुए दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाने की जरूरत ही नहीं कर सकता। आपके इस एहसान का बदला तो हम किसी भी तरह नहीं चुका सकते। हां, आपके दिल की आवाज बनकर उन तक आपकी आवाज हम पहुंचाकर आपके दिलों को कुछ सुकून तो दे ही सकते हैं। FM 90.0 MHz पर हम हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका अपना रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। हम लेकर आए हैं फौजी भाइयों के लिए एक विशेष कार्यक्रम, जरा याद करो कुर्बानी।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: दोस्तों, अगर आप कोई विशेष गीत सुनना चाहते हो या अपने किसी खास को कोई खास गीत सुनाना चाहते हो, तो हमें हमारे टेलीफोन नंबर 7056413010 पर कॉल करके बताइए। हम आपके अनुरोध पर आपकी पसंद का गीत आप कहेंगे तो उनके और आपके नाम के साथ और आपके संदेश के साथ प्रसारित करेंगे। गीत के अलावा भी अगर आपके परिवार में किसी का जन्मदिन है या कोई अन्य संदेश आप रेडियो के माध्यम से अपने परिजनों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ कॉल भर कर दीजिए, बाकी काम हमारा, हम बनेंगे ना आपके दिल के हम सफर। आइए शुरू करते हैं फौजी भाइयों के लिए हमारा विशेष उपहार, जरा याद करो कुर्बानी।

सच में यही होता है। जब कहकर आते हैं कि बस दो चार महीनों में ही वापस आ रहा हूं और किसी वजह से छुट्टी पास नहीं होती ना, उधर वो बेकरार होते हैं, इधर आप बेचैन होते हैं। दिल करता है किसी तरह से पंख लग जाएं और उड़कर पहुंच जाएं अपने महबूब की बाहों में, क्योंकि उधर से भी यही आवाज आ रही होती है कि

लेकिन जरूरी तो नहीं कि सब कुछ मन के मुताबिक ही हो। दोस्तों, आपके बलिदान और हिम्मत और त्याग की गूंज धरती की हर धड़कन में सुनाई देती है। आपके दिमाग को कर्तव्य ने बांध रखा होता है, बस दिल को कौन बांध सकता है? आज तो कोई नहीं बांध पाया। उधर उनका नहीं लगता, इधर आपका नहीं लगता, और दोनों दिलों से जो आवाज आती है वो आवाज होती है ये।

0: देश की सुरक्षा में तैनात फौजी भाइयों, सिर्फ आपके परिवारों की ही नहीं बल्कि पूरे देश की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। पिता, भाई, बहन, पत्नी सब आप पर गर्व महसूस करते हैं और आपकी वापसी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और हाँ, इंतजार तो आप भी बेसब्री से करते हैं। खट्टी मीठी कड़वी नमकीन भावनाओं को विराम तो तब मिलता है जब घर से चिट्ठी आती है।
1: चिट्ठी।

आपका समर्पण और साहस हम सबके लिए देशभक्ति का सच्चा उदाहरण है। हमें गर्व है कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ फौज हमारी रक्षा कर रही है। आपके साथ साथ आपके परिवारों का समर्पण और त्याग, वाकई ये सब कुछ काबिले तारीफ है। मिलन को आतुर प्रतीक्षारत नयन बिस्तर में अपने कोरों को पोंछते हुए दिल से लगाकर तुम्हारी तस्वीर को चूमकर बुदबुदाते हैं

हर फौजी भाई, चाहे वो किसी भी बटालियन में हो, किसी भी रैंक पर हो, हर रोज हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं। आपके इस साहस को पूरा देश प्रणाम करता है। हमारे लिए तो आप आदर्श हो ही, आप किसी और के भी तो हीरो हो जिन्होंने

फौजी भाइयों, पूरे भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। आपकी हिम्मत और जज्बा हर दिल में बसता है, हमारे लिए और आपके लिए प्यार, मोहब्बत, घर परिवार, लेकिन आपके लिए तो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ देश सेवा है। इसके लिए आप कुछ सोचते ही नहीं, और ना ही आपके जीवन में शायद इसके अलावा कोई बात होती है। हम आपकी इस सोच की कदर करते हैं। अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, कुछ भी तो नहीं इसके अलावा जो आपके दिलो दिमाग पर हो, इसीलिए उनकी शिकायत आपसे अक्सर ये रहती है।

दोस्तों, अब अपने रेडियो दोस्त रेडियो हम सफर नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा इसी कार्यक्रम को एक नई सुगंध एक नया फ्लेवर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए जरा याद करो कुर्बानी। रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, प्रस्तुत किया नरेश शर्मा ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं अजय पाल सिंह, भारतीय वायुसेना का एक पूर्व वायु सैनिक, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रेडियो वितस्ता 90.0 FM के माध्यम से अपने विचार आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए मैं कार्यक्रम समन्वयक श्री भारत सुपारी जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपसे केवल एक सरल सा संदेश साझा करना चाहता हूँ। जीवन में आप जो भी कार्य करें उसे पूरे मन, पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से करें। जब हम अपने कर्म को पूजा मानकर कार्य करते हैं तब सफलता केवल एक संभावना नहीं रहती बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। हम सभी का प्रयास ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा घर सुखी रहे, हमारा शहर प्रगतिशील बने और हमारा देश समृद्ध एवं सशक्त हो। राष्ट्रीय निर्माण बड़े बड़े कार्यों से नहीं बल्कि हर नागरिक के छोटे छोटे अच्छे कर्मों से होता है। मेरे युवा साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। अच्छे संस्कार, ईमानदारी, अनुशासन और परिश्रम ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आइए हम संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे और अपने भारत को विकास, एकता और खुशहाली की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।
1: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 एफएम रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनते रहो अपने पसंदीदा की। आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विद स्टार, हम सफर जिंदगी का।

0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
2: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
3: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
4: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: जय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो दस्ता हम सफर जिंदगी का। आप सभी श्रोताओं को, अम्बाला वासियों को, देशवासियों को हमारी ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज सुबह से ही आपने रेडियो विदस्ता FM 90 पर देशभक्ति के गीत सुने और स्वतंत्रता दिवस के बारे में हमने बात की, और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और हमारी टीम रेडियो विदस्ता ने भी अलग अलग आवाज़ों में आप तक बधाई का संदेश पहुँचाया है। आइए अब आपको सुनाते हैं हमारे प्रधानमंत्री का भाषण, जो उन्होंने आज 80वें इंडिपेंडेंस डे के ऊपर लाल किले से संबोधन किया। आप सुनिए और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है, और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप, त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है, और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं, और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उस मैं डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। प्यारे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी, डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए, हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए, हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी, जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है, आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चीप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चीप अनिवार्य है। और इसे इस चीप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देता। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे ही एक चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है। पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है, भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ। क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए, नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया। बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है, कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं। विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल के विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है, और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है, और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है, और उसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती है। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है, और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने

एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया है। और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले, इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है और उसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है। हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमने इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां तो नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर

0: पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है। और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पे तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी, देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना। इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है, वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था कि संकट आएगा, लेकिन उस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपये में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा। लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स, इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। मुझे और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरते मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है मेरे प्यारे देशवासियों। दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमई को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे। और चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्र तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफपीए के कारण हमारे श्रीप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है, हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है। और इसलिए मैं चाहूंगा हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे लिए कोई बजबर है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं 3 चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, ये समय का ये अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेनर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज। और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी होना चाहिए, यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्त धारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, खूब फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्त धारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलाइन वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है मेरे प्यारे देशवासियों। डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके चला है तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, VFX हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारी गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदा है, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। क्षमता बहुत है, लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से कर और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र। दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों ना हो। कॉन्सेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है। विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सेंट करे। ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की सात शक्तियां, सप्त शक्तियां, उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो। भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा कि देशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी एक दो फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए। भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए। टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए। भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी। हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है, इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश को नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों ने नौजवानों को उसे नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है। 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको। 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी, और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है। करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ा काम कर दिया साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके थे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, दो हजार नौ दस का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए, मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए, हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बन करके आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती ओलंपिक में, और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान है, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत ये हम सबका सामूहिक दायित्व तो होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हम हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओ ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दूधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4-4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहू लुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है गारंटी नहीं है, आ युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली है वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है, मैं पिछले दिनों सानंद में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां, देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही, वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था, वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है, और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से यह सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए, और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास
1: अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ के पास। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था वो मेरे परिवारों के बचे हैं। वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले। आपको लगेगा ये 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले। और इसलिए हर घर में वातावरण बने। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है। और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है। और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं, और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए। पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सब से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे, एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

नमस्कार, रेडियो वितस्ता के सभी प्यारे श्रोताओं को अनु की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आप सभी के लिए कुछ विशेष पंक्तियां। स्वतंत्रता की वेदी पर जिन्होंने प्राण गंवाए हैं, उन वीर शहीदों को हम सबने नमन के पुष्प चढ़ाए हैं। गूंज रहा है कोने कोने में देशभक्ति का है तराना, आओ मिलकर वतन की शान में यह पर्व मनाना। आइए आज के दिन हम सब मिलकर अपने देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए अपना योगदान देने का संकल्प लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़, हम सफर जिंदगी का। जय हिंद, भारत माता की जय।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विविधता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं अजय पाल सिंह, भारतीय वायुसेना का एक पूर्व वायु सैनिक, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रेडियो वितस्ता 90.0 एफएम के माध्यम से अपने विचार आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए मैं कार्यक्रम समन्वयक श्री भारत सुपारी जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपसे केवल एक सरल सा संदेश साझा करना चाहता हूँ। जीवन में आप जो भी कार्य करें, उसे पूरे मन, पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से करें। जब हम अपने कर्म को पूजा मानकर कार्य करते हैं, तब सफलता केवल एक संभावना नहीं रहती, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। हम सभी का प्रयास ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा घर सुखी रहे, हमारा शहर प्रगतिशील बने और हमारा देश समृद्ध एवं सशक्त हो। राष्ट्रीय निर्माण बड़े बड़े कार्यों से नहीं, बल्कि हर नागरिक के छोटे छोटे अच्छे कर्मों से होता है। मेरे युवा साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। अच्छे संस्कार, ईमानदारी, अनुशासन और परिश्रम ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आइए हम संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे और अपने भारत को विकास, एकता और खुशहाली की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 एफएम ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: हवा में जब तिरंगा लहराता है तो सिर्फ रंग नहीं देश का गौरव सर्वोच्च शिखर पर दिखाई देता है। हर दिल में उमंग, हर आंख में गर्व, ये सिर्फ एक ध्वज नहीं, हमारी पहचान, हमारा स्वाभिमान, हमारी शान है हमारा तिरंगा।
1: एक तिरंगा, करोड़ों दिलों की एक पहचान। आइए संकल्प लें, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा। आजादी के अमृत काल में हरियाणा सरकार का आह्वान है, हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ें और देशभक्ति के इस उत्सव के सहभागी बनें।
0: अपने घर को देशभक्ति के रंगों से सजाइए, तिरंगा फहराइए, गर्व से लहराइए और इस बार अपने घर को बनाइए देश के सम्मान का प्रतीक। आइए मिलकर मनाएं हर घर तिरंगा अभियान।
2: सुनन खातर हरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

नमस्कार, रेडियो वितस्ता के सभी प्यारे श्रोताओं को अनु की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आप सभी के लिए कुछ विशेष पंक्तियां। स्वतंत्रता की वेदी पर जिन्होंने प्राण गंवाए हैं, उन वीर शहीदों को हम सबने नमन के पुष्प चढ़ाए हैं। गूंज रहा है कोने कोने में देशभक्ति का है तराना, आओ मिलकर वतन की शान में यह पर्व मनाना। आइए आज के दिन हम सब मिलकर अपने देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए अपना योगदान देने का संकल्प लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो वितस्ता 90.0 MHz। हम सफर जिंदगी का। जय हिंद, भारत माता की जय।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के,
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। धान में ब्लास्ट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और तेला से बचाव के लिए समय पर करें निगरानी। लक्षण दिखते ही दवा का छिड़काव, संतुलित सिंचाई रखें। धान की पत्तियों पर बदरा यानी ब्लास्ट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और तेला जैसी बीमारियों एवं कीड़ों का आक्रमण हो सकता है। ऐसे में किसानों को सजग रहना चाहिए और समय पर खेतों का निरीक्षण कर बचाव के प्रबंध करने होंगे। HAU के कुलपति प्रोफेसर BR कांबोज ने बताया कि बदरा यानी ब्लास्ट बीमारी के लक्षण नजर आते ही प्रति एकड़ 300 मिलीलीटर आइसोप्रोथिलियन 40% EC या 200 ग्राम कार्बोंडाइजिम 50 WP के घोल का छिड़काव करें। पानी की मात्रा 200 लीटर रखें। दूसरे छिड़काव 50% बलियां निकालने पर करें। बलियां निकालते समय खेत में सूखा ना लगने दें। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट या जीवागुण पत्ती अंगमारी जिन खेतों में आ जाए उनमें पानी लगातार ना खड़ा रहने दें और ना ही उस खेत का पानी दूसरे खेत में जाने दें। ऐसे खेतों में नाइट्रोजन खाद बाद में डालें। खेत में खरपतवार को ना पनपने दें, छिड़काव जरूरी। धान की फसल में पानी की कमी ना होने दें। सिंचाई 5 से 6 सेंटीमीटर से अधिक गहरी ना करें। खेत में खरपतवारों को कभी ना पनपने दें। सफेद पीट वाला व भूरा तेला पौधे के तने के साथ लगा रहता है। 120 ग्राम पाइमोट्रोजिन 50% WUG चेस 50% WUG या 80 ग्राम डाइनोटिफ्रॉन 20 AG ओशीन 20 AG को 200 लीटर पानी से मिलाकर प्रति एकड़ छिड़कें। रोपाई के 3 से 6 माह बाद डालें नाइट्रोजन। HAU ने किसानों को सलाह दी है कि धान में यूरिया का प्रयोग फॉस्फोरस के स्तोत्र के अनुसार करें। यदि फॉस्फोरस की प्रति DAP से की गई है तो किस्म के अनुसार 42 से 110 किलोग्राम और SSP से की गई है तो 52 से 130 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया डालें। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा पहले देने के बाद शेष 2 बराबर भागों में रोपाई के 3 और 6 सप्ताह बाद डालें। शीत ब्लाइट पर 15 दिन में छिड़काव करें। HAU ने किसानों को सलाह दी है कि शीत ब्लाइट बीमारी से बचाव के लिए खेत और मेंढों पर दूब व अन्य घास ना उगने दें। बीमारी के लक्षण दिखते ही अनुचित फफूंदनाशी का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। जरूरत पड़ने पर 15 दिन बाद दूसरा छिड़काव भी करें ताकि बीमारी का फैलाव रोका जा सके। सीधी बिजाई वाली किस्मों में डालें यूरिया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र चंद्र के अनुसार सीधी बिजाई बासमती धान की लंबे कद की किस्मों के लिए 55 किलोग्राम यूरिया और छोटे कद की किस्मों के लिए 90 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ डालें। नाइट्रोजन की मात्रा लंबे कद की किस्मों में बुवाई के 2 एवं 7 सप्ताह बाद डालें, जबकि छोटे कद की किस्मों में 3 और 6 एवं 8 या 9 सप्ताह बाद डालें। बत्तर व सूखी अवस्था वाले खेतों में सिंचाई मौसम अनुसार सप्ताह के अंतराल में करें। जैविक खेती को बढ़ावा। वर्मी कंपोस्ट पर मिलेगी 80% सब्सिडी। सीजन में 2 बार खुलेगा पोर्टल, रजिस्ट्रेशन करने वालों को ही मिलेगा लाभ। प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने, इससे जुड़े किसानों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों को जैविक खाद
वर्मी कंपोस्ट पर 80% सब्सिडी देने की योजना के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानों की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बचाना है। योजना के अनुसार यह सब्सिडी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की वैज्ञानिक सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत जैविक उर्वरकों पर ही जारी की जाएगी। कृषि उप निर्देशकों के लिए जारी पत्र में कहा गया है कि सरकार का लक्ष्य एक ऐसा टिकाऊ तंत्र विकसित करना है जिसमें किसान सुरक्षित स्वस्थ और अवशेष मुक्ति कृषि उत्पादकों का उत्पादन कर सके। कृषि विभाग के महानिदेशक ने सभी जिलों के उप निर्देशकों को इन दिशा निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक किसान जागरूक होकर इस सब्सिडी योजना का लाभ उठाकर जैविक खेती की ओर रुख करें। ऐसे करें आवेदन। पंजीकरण अनिवार्य। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत है। ऑनलाइन प्रोसेस। किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के अनुसार किसान का सारा विवरण मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल से संबद्ध ही ले लिया जाएगा। अनुभव की जानकारी। आवेदन करते समय किसानों को यह स्पष्ट करना होगा कि वे पहले से जैविक खेती कर रहे हैं या इस क्षेत्र में नए हैं। जैविक खेती का दायरा बढ़ाना। कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो इस योजना का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान कर प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करना है ताकि किसानों की रासायनिक खादों पर निर्भरता कम हो और मिट्टी की सेहत सुधरे। जैविक खेती से खेत की मिट्टी में सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ाना है। कृषि अधिकारियों का मानना है कि इससे पर्यावरण का संरक्षण होगा और किसानों का खर्च घटेगा। उपभोक्ताओं तक रसायनों से मुक्त स्वस्थवर्धक कृषि उत्पाद पहुंच सकेगा। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक होंगे आवेदन। कृषि विभाग के APPO डॉक्टर सतीश ने बताया कि जो किसान जैविक खाद पर सब्सिडी चाहते हैं उन्हें विभाग द्वारा जारी पोर्टल पर योजना का लाभ देने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभाग ने खरीफ और रबी फसलों के लिए अलग अलग समय सीमा तय की है। खरीफ फसलों के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक होगी। रबी फसलों के लिए आवेदन की 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक की जा सकती है। किसान को तय सरकारी दुकानों से प्रोडक्ट खरीदने होंगे। इसके बिल अपलोड करने के लिए सब्सिडी सीधे खाते में आएगी। ये थे आज के कृषि समाचार। आशा करती हूँ आपको इन जानकारियों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है तो आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम सभी श्रोताओं तक पहुंचा सके। स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए आज्ञा। मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।

मिट्टी की खुशबू में हिंदुस्तान है, तिरंगे में बसा हर हिंदुस्तानी का अभिमान है। आजादी हमें विरासत में मिली है, इसे संजो कर रखना हमारा सम्मान है। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आइए इस दिन सिर्फ जश्न ही नहीं बल्कि अपने देश के प्रति प्रेम, एकता और जिम्मेदारी का संकल्प भी लें। सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। समय समय पर हम आपके साथ अलग अलग योजनाओं के बारे में बात करते हैं जो भारत सरकार की ओर से हमारे देश के सभी देशवासियों के लिए होती है। आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रूपए देती है सरकार। किसानों की आय बढ़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रूपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से दिए जा रहे हैं। राशि 4-4 महीनों के अंतराल में 2,000 रूपए की 3 किस्तों में दी जाती है। ये दस्तावेज जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी है। किसान का नाम, आयु, लिंग, श्रेणी, SC/ST, आधार कार्ड, जमीन की फरद, पहचान पत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड या केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार या उनके अधिकारियों आदि द्वारा जारी किए गए किसी भी पहचान दस्तावेज आदि, बैंक खाता संख्या और लाभार्थी का मोबाइल नंबर। ऐसे ले सकते हैं लाभ। योजना का लाभ लेने के लिए किसान pmkisan.gov.in यानी pmkisan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर योजना का लाभ खाते में प्राप्त होता है। किसान यह आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSS से भी करा सकते हैं। पात्र किसान पटवारी, राजस्व अधिकारी या अन्य नामित अधिकारी एजेंसी के पास जरूरी विवरण प्रस्तुत कर आवेदन कर सकते हैं। ये व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं है। इस योजना में कुछ लोग शामिल नहीं हो सकते। इनमें संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति, पूर्व या वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, नगरपालिका चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन, केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी और मासिक 10,000 रूपए से अधिक पेंशन लेने वाले ग्रुप डी के कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA और आर्किटेक्ट भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं। इनके पास खेती की जमीन है तो भी सम्मान निधि का लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। आयकर दायरे में आने वाले किसान भी योजना से बाहर रखे गए हैं। ये थी संक्षिप्त जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। समय समय पर हम आपको अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहेंगे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के माध्यम से। अब मुझे दीजिए इजाजत, कोई और जानकारी लेके आपसे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: हवा में जब तिरंगा लहराता है तो सिर्फ रंग नहीं देश का गौरव सर्वोच्च शिखर पर दिखाई देता है। हर दिल में उमंग, हर आंख में गर्व, ये सिर्फ एक ध्वज नहीं, हमारी पहचान, हमारा स्वाभिमान, हमारी शान है हमारा तिरंगा।
1: एक तिरंगा, करोड़ों दिलों की एक पहचान। आइए संकल्प लें, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा। आजादी के अमृत काल में हरियाणा सरकार का आह्वान है।

0: हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े और देशभक्ति के इस उत्सव के सहभागी बने।
1: अपने घर को देशभक्ति के रंगों से सजाइए, तिरंगा फहराइए, गर्व से लहराइए और इस बार अपने घर को बनाइए देश के सम्मान का प्रतीक। आइए मिलकर मनाएं हर घर तिरंगा अभियान।
2: नमक 0.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हंद।
3: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

गूंज रहा है जग में भारत का नगमा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा यह तिरंगा हमारा। आप सभी श्रोताओं को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाइयां। मैं कृष्णा रेडियो विदस्ता की पूरी टीम की ओर से आप सभी के सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आइए आज के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर उन अमर शहीदों और वीर जवानों को नमन करें जिनके त्याग और बलिदान की बदौलत आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। आवाज की हर तरंग से हम देश का मान बढ़ाएंगे। रेडियो विदस्ता के संग हर दिल में देशभक्ति का अलख जगाएंगे। लहराएगा तिरंगा आजादी के तरानों के साथ, लहराएगा तिरंगा आजादी के तरानों के साथ। जुड़े रहिए रेडियो विदस्ता पर एक नए विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

नमस्कार श्रोताओं, मैं अजय पाल सिंह, भारतीय वायुसेना का एक पूर्व वायु सैनिक, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रेडियो वितस्ता 90.0 एफएम के माध्यम से अपने विचार आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए मैं कार्यक्रम समन्वयक श्री भारत सुपारी जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपसे केवल एक सरल सा संदेश साझा करना चाहता हूँ। जीवन में आप जो भी कार्य करें, उसे पूरे मन, पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से करें। जब हम अपने कर्म को पूजा मानकर कार्य करते हैं, तब सफलता केवल एक संभावना नहीं रहती, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। हम सभी का प्रयास ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा घर सुखी रहे, हमारा शहर प्रगतिशील बने और हमारा देश समृद्ध एवं सशक्त हो। राष्ट्रीय निर्माण बड़े बड़े कार्यों से नहीं, बल्कि हर नागरिक के छोटे छोटे अच्छे कर्मों से होता है। मेरे युवा साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। अच्छे संस्कार, ईमानदारी, अनुशासन और परिश्रम ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आइए हम संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे और अपने भारत को विकास, एकता और खुशहाली की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनिए नितिन मुकेश और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

नमस्कार, रेडियो वितस्ता के सभी प्यारे श्रोताओं को अनु की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आप सभी के लिए कुछ विशेष पंक्तियां। स्वतंत्रता की वेदी पर जिन्होंने प्राण गवाए हैं, उन वीर शहीदों को हम सबने नमन के पुष्प चढ़ाए हैं। गूंज रहा है कोने कोने में देशभक्ति का है तराना, आओ मिलकर वतन की शान में यह पर्व मनाना। आइए आज के दिन हम सब मिलकर अपने देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए अपना योगदान देने का संकल्प लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़, हम सफर जिंदगी का। जय हिंद, भारत माता की जय।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

मिट्टी की खुशबू में हिंदुस्तान है, तिरंगे में बसा हर हिंदुस्तानी का अभिमान है। आजादी हमें विरासत में मिली है, इसे संजो कर रखना हमारा सम्मान है। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आइए इस दिन सिर्फ जश्न ही नहीं बल्कि अपने देश के प्रति

0: थम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

नमस्कार, तुशु बोजान रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी हुंद रेडियो वितस्ता छु पन्ने माजी जेब पोछर दिन खतर वक्त वक्त तुंद खतर नई प्रोग्राम तो नव जानकारी हेत हमेश इवान बचुस तुहुंद रेडियो दोस्त भरत सोपोरी आज छुस बु तुहुंद खतर कशर ब्रॉडकास्ट सेगमेंट्स मंज अख नव डल हेत आमुत आज बोजनाओ इस तो अख कशर अफसान यु जन लिखमुत सान कशीर हिंद मायानाज लेखक श्री वीरेंद्र पटवारी साबन अथ अफसानस नाव पोज अपुज वलिव बोजव ये अफसान पोज अपुज अख लकुट अफसान अमिक लेखन वल वीरेंद्र पटवारी

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

गूंज रहा है जग में भारत का नगमा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा यह तिरंगा हमारा। आप सभी श्रोताओं को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाइयां। मैं कृष्णा रेडियो विदस्ता की पूरी टीम की ओर से आप सभी के सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आइए आज के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर उन अमर शहीदों और वीर जवानों को नमन करें जिनके त्याग और बलिदान की बदौलत आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। आवाज की हर तरंग से हम देश का मान बढ़ाएंगे। रेडियो विदस्ता के संग हर दिल में देशभक्ति का अलख जगाएंगे। लहराएगा तिरंगा आजादी के तरानों के साथ, लहराएगा तिरंगा आजादी के तरानों के साथ। जुड़े रहिए रेडियो विदस्ता पर एक नए विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत।

0: थे ताज महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

नमस्कार श्रोताओं, मैं अजय पाल सिंह, भारतीय वायुसेना का एक पूर्व वायु सैनिक, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रेडियो वितस्ता 90.0 FM के माध्यम से अपने विचार आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए मैं कार्यक्रम समन्वयक श्री भारत सुपारी जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपसे केवल एक सरल सा संदेश साझा करना चाहता हूँ। जीवन में आप जो भी कार्य करें उसे पूरे मन, पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से करें। जब हम अपने कर्म को पूजा मानकर कार्य करते हैं तब सफलता केवल एक संभावना नहीं रहती बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। हम सभी का प्रयास ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा घर सुखी रहे, हमारा शहर प्रगतिशील बने और हमारा देश समृद्ध एवं सशक्त हो। राष्ट्रीय निर्माण बड़े बड़े कार्यों से नहीं बल्कि हर नागरिक के छोटे छोटे अच्छे कर्मों से होता है। मेरे युवा साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। अच्छे संस्कार, ईमानदारी, अनुशासन और परिश्रम ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आइए हम संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे और अपने भारत को विकास, एकता और खुशहाली की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है।

मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं, चांद हर ईद में तन्हाई का जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी, मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कवारी है, मैंने सहूलत का गला घोटा जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ, हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डर जाता हूँ, मैं सैलाब गुमराह से डर जाता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं खुद से लड़ नहीं सकता, अपनों की तरफ बंदूक लेकर मैं बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की ये सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो, तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे, तुम्हें अगर इश्क है इससे, तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ, कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। धन्यवाद।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए,

ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गाँव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचाए।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूँ। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: और मत छोड़ो, हर घर तक हर गांव तक आए।
1: नाइन्टी पॉइंट जीरो मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: कौन भी बोला है जी?
1: मैंने जब पूछा बोल तेरा नाम क्या, तो हंस के वो बोली नाम से है काम क्या। आई थी वो धमसे, आई थी वो धमसे, गई छम छम छम मन्नू।

0: सामने वो देख रहे एक ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल,
1: सिग्नल को तोड़ दो बाद बड़ी सिंबल।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
2: हम थे वो थी हम थे।

दिल ठक ठक ठक धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के, वाह वाह वाह, हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

दोस्तों भोजन एफएम नमत आचार्य सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हूं भोजन रूजियो पनिन पसंदीदा बात।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

नमस्कार, रेडियो वितस्ता के सभी प्यारे श्रोताओं को अन्नू की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आप सभी के लिए कुछ विशेष पंक्तियां। स्वतंत्रता की वेदी पर जिन्होंने प्राण गवाए हैं, उन वीर शहीदों को हम सबने नमन के पुष्प चढ़ाए हैं। गूंज रहा है कोने कोने में देशभक्ति का है तराना, आओ मिलकर वतन की शान में यह पर्व मनाना। आइए आज के दिन हम सब मिलकर अपने देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए अपना योगदान देने का संकल्प लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़, हम सफर जिंदगी का। जय हिंद, भारत माता की जय।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: हवा में जब तिरंगा लहराता है तो सिर्फ रंग नहीं देश का गौरव सर्वोच्च शिखर पर दिखाई देता है। हर दिल में उमंग, हर आंख में गर्व, ये सिर्फ एक ध्वज नहीं, हमारी पहचान, हमारा स्वाभिमान, हमारी शान है हमारा तिरंगा।
1: एक तिरंगा, करोड़ों दिलों की एक पहचान। आइए संकल्प लें, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा। आजादी के अमृत काल में हरियाणा सरकार का आह्वान है, हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ें और देशभक्ति के इस उत्सव के सहभागी बनें।
0: अपने घर को देशभक्ति के रंगों से सजाइए, तिरंगा फहराइए, गर्व से लहराइए और इस बार अपने घर को बनाइए देश के सम्मान का प्रतीक। आइए मिलकर मनाए हर घर तिरंगा अभियान।
2: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

मिट्टी की खुशबू में हिंदुस्तान है, तिरंगे में बसा हर हिंदुस्तानी का अभिमान है। आजादी हमें विरासत में मिली है, इसे संजो कर रखना हमारा सम्मान है। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आइए इस दिन सिर्फ जश्न ही नहीं बल्कि अपने देश के प्रति प्रेम, एकता और जिम्मेदारी का संकल्प भी लें। सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

गूंज रहा है जग में भारत का नगमा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा यह तिरंगा हमारा। आप सभी श्रोताओं को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाइयाँ। मैं कृष्णा रेडियो विदस्ता की पूरी टीम की ओर से आप सभी के सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आइए आज के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर उन अमर शहीदों और वीर जवानों को नमन करें जिनके त्याग और बलिदान की बदौलत आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। आवाज की हर तरंग से हम देश का मान बढ़ाएंगे। रेडियो विदस्ता के संग हर दिल में देशभक्ति का अलख जगाएंगे। लहराएगा तिरंगा आजादी के तरानों के साथ, लहराएगा तिरंगा आजादी के तरानों के साथ। जुड़े रहिए रेडियो विदस्ता पर एक नए विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत।

0: हवा में जब तिरंगा लहराता है तो सिर्फ रंग नहीं देश का गौरव सर्वोच्च शिखर पर दिखाई देता है। हर दिल में उमंग, हर आंख में गर्व, ये सिर्फ एक ध्वज नहीं, हमारी पहचान, हमारा स्वाभिमान, हमारी शान है हमारा तिरंगा।
1: एक तिरंगा, करोड़ों दिलों की एक पहचान। आइए संकल्प लें, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा। आजादी के अमृत काल में हरियाणा सरकार का आह्वान है, हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ें और देशभक्ति के इस उत्सव के सहभागी बनें।
0: अपने घर को देशभक्ति के रंगों से सजाइए, तिरंगा फहराइए, गर्व से लहराइए और इस बार अपने घर को बनाइए देश के सम्मान का प्रतीक। आइए मिलकर मनाएं हर घर तिरंगा अभियान।
2: मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।
3: FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के सभी सुनने वालों को देश विदेश में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन दिवस पर आइए मैं आपको देशभक्ति के गीत सुनाता हूँ।

कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है।

FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हर्षोल्लास से हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड कॉन्ग्रेचुलेशन।

0: दृढ़ता हो लोह पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज मिले, आजाद के जैसे हस्ती हो, उद्धम सिंह का उद्धम दिल बिस्मिल, मंगल पांडे का ताव मिले, हे ईश्वर जन्म दोबारा दो तो भारत माँ की छाव मिले, तो भारत माँ की छाव मिले।
1: जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का पर। आज हम आपको देश प्रेम के गीत सुनाएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज पर।

0: जी हाँ, आइए आपको सुनाते हैं भूतपूर्व वायु सैनिक और हमारे दोस्त श्री अजयपाल सिंह जी का वॉइस नोट, जो देशवासियों के नाम संदेश है।
1: प्रिय युवाओं, साथी नागरिकों और सम्मानित देशवासियों,

0: किया जिन्होंने उन सपनों को वास्तविक बनाया। भारतीय वायुसेना में 2 दशकों की सेवा के दौरान मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा और महसूस किया कि हमारे सशस्त्र बल कैसे निसंदेह साहस और समर्पण का प्रतीक हैं। एक एयर वेटरन के रूप में, उसके बाद कॉरपोरेट क्षेत्र में नेतृत्व भूमिकाएं निभाने के बाद, और अब अम्बाला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड रिसर्च में प्रशिक्षण और प्लेसमेंट अधिकारी के रूप में 8 समृद्ध वर्ष बिताने के साथ एकेडमिक क्षेत्र के एक हिस्से के रूप में मेरी यात्रा उन अविश्वसनीय अवसरों का एक प्रमाण है जो हमारा देश परिवर्तन और विकास को अपनाने के इच्छुक लोगों को प्रदान करता है। हाल के वर्षों में मुझे सत्यकर्म और गो रविगो जैसी लघु फिल्मों में अभिनय के माध्यम से रचनात्मकता की दुनिया में उतरने का अवसर मिला। इन अनुभवों ने इस सच्चाई को पुष्ट किया कि हमारे देश की प्रगति उम्र या पेशे की परवाह किए बिना प्रतिभाओं और जुनून के पोषण से जुड़ी हुई है। आइए हम उस सामूहिक यात्रा पर विचार करें जिसने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है और आगे आने वाली अपार संभावनाओं पर भी विचार करें। युवाओं से मैं आपसी ईमानदारी, परिश्रम और नवीनता के मूल्यों को अपनाने का आग्रह करता हूं। कल के पथ प्रदर्शक के रूप में आप पर एक ऐसे भविष्य को आकार देने की जिम्मेदारी है जिसमें एकता, विविधता और प्रगति शामिल हों। मेरे साथी नागरिकों, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे राष्ट्र की नींव अनगिनत व्यक्तियों के पसीने, परिश्रम और बलिदान पर आधारित है। हम जिस स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं वह जिम्मेदारियां भी लेकर आती है। आइए हम न्याय, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों को बनाए रखने का कर्तव्य भी निभाएं। आइए हम प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए एकजुट रहें और साथ मिलकर आगे बढ़ें। इस शुभ अवसर पर मैं हमारे देश की कहानी को चित्रित करने में योगदान देने के लिए प्रत्येक भारतीय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हम सभी एकता और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा देना जारी रखें, अपने मतभेदों को पार करें और भारतीयों के रूप में अपनी आम पहचान का जश्न मनाएं। जैसे ही तिरंगा झंडा हवा में लहराता है, यह उन साझा सपनों और आकांक्षाओं को याद दिलाता है जो हमें एक राष्ट्र के रूप में बांधते हैं। यह हमें एक उज्ज्वल कल की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने के लिए प्रेरित करता है। इस महत्वपूर्ण दिन पर आइए हम अपने प्यारे भारत के विकास और बेहतरी में योगदान देने की अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें। हम अपनी ऊर्जा को भारत की आशा, प्रगति और एकता का प्रतीक बनाने में लगाएं। हमारे आज के कार्य एक ऐसे कल को आकार दें जिसे हम आने वाली पीढ़ियों को सौंपकर गर्व महसूस कर सकें। अंत में मैं रेडियो वितास्ता के संयोजक भारत सोपरी जी का मुझे इस संदेश के लिए आमंत्रित करने के लिए तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।
1: 15 अगस्त हर साल आता है और हमारे दिलो दिमाग में ये भाव जागृत करके चला जाता है कि हम आजाद हैं और आजाद रहेंगे। ये पर्व सबके दिलों में देश प्रेम की हलचल पैदा कर जाता है। भारत की ओर भारत माता स्वतंत्र सत्ता के लिए कर्तव्य का भाव जगा जाता है। आइए सुनते हैं एक देश प्रेम गीत।
2: जी हाँ, गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं वॉइस नोट आरजे शेरे का देशवासियों के नाम।
3: नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आरजे शेरी, रेडियो वितस्ता सुनने वाले श्रोताओं को और समस्त भारतवासियों को आजादी की शुभकामनाएं देता हूं और ये गीत सुनने की फरमाइश करता हूं। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे।

0: दोस्तों, 15 अगस्त 1947, ये वो दिन है जब हमारे देश को अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आजादी मिली थी। ब्रिटिश राज में देश की जनता पर काफी जुल्म किए गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जुल्मों से छुटकारा दिलाने के लिए सैकड़ों फ्रीडम फाइटर्स ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये दिन उन सब महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का भी है, जिन्होंने देश की आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। फांसी चढ़ गए और सीने पर गोली खाई, हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं। जो मिट गए देश पर, हम उन्हें सलाम करते हैं। सभी शहीदों को भावपूर्वक नमन और श्रद्धांजलि देते हैं।
1: जी हाँ, वॉइस नोट्स का सिलसिला तो जारी है। आइए आपको ले चलते हैं अंबाला सिटी, जहां से हमारे पास वॉइस नोट आया है सिया शर्मा का। आइए सुनते हैं सिया क्या कहती है।
2: फ्रीडम इन माइंड, फेथ इन वर्ड्स, प्राइड इन आवर सोल्स। A very happy independence to all the listeners of Radio Vitasta and people living in this country. Today, I, Sia Sharma, student of PKR Jain Vatika, is delighted to congratulate you all on this auspicious occasion of Independence Day. The song I would prefer to listen today, which will make the inner patriot in me relive, would be

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। आप सुन रहे हैं देश प्रेम के गीत और हमारे श्रोताओं के देशवासियों के नाम बधाई संदेश। आइए सुनते हैं अब मानिया शर्मा अंबाला सिटी से, जो 10 साल की है, 5वीं कक्षा में पढ़ती है। देखिए क्या संदेश लेके आई है।
1: गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। नमस्कार, मैं मान्या, मुरलीधर DAV की छात्रा। आप सभी रेडियो वितस्ता के दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस पर बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इस उपलक्ष में मैं जो गीत सुनना चाहूंगी उसका नाम है ए वतन। मुझको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। विशिंग यू ऑल द व्यूअर्स ऑफ रेडियो वितस्ता अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।

कसम तेरी। भारत की रक्षा के वादे और कसम के साथ चलो हम सब आजादी के इस महोत्सव में डूब जाते हैं। न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी है, कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी है।

0: मेरे और FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के श्रोताओं और देश विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: हमारा तिरंगा, हमारी शान। भारत में तिरंगे का अर्थ है राष्ट्रीय ध्वज, जिसमें तीन रंग की क्षितिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। ये तीनों समानुपात में है और इसके साथ बीच में अशोक चक्र। किरणी, आप क्या कहती हैं?
2: प्यारे देशवासियों, दुनिया में एकमात्र भारतीय संस्कृति ही है जहां बचपन से ही सिखाया जाता है जन्म देने वाली माँ और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। ये हमारी आस्था और मातृत्व शरण में विश्वास रखने वाली हमारी सांस्कृतिक विशेषता है। इश्क तो करता है हर कोई महबूब पे, तो मरता है हर कोई। इश्क तो करता है हर कोई महबूब पे, तो मरता है हर कोई। कभी वतन को महबूब बना के देखो, तुझ पे मरेगा हर कोई।

शाम बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग

0: आपने ट्यूनिंग किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हमें खुशी है कि आज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज एक माध्यम बना आपके और देशवासियों के बीच शुभकामनाएं साझा करने हेतु। आइए आपको एक कविता सुनाता हूं। कविता है दुनिया और हमारे देश में फर्क। मेरी मिट्टी मेरा देश मेरा स्वर्ग है यही, दुनिया और मेरे देश में फर्क है यही। सोने जैसा गेहूं और चांदी जैसा धान, हर मौसम मिल जाते यहां है इसकी है पहचान। पतझड़ सावन बरखा सर्द है यही, दुनिया और मेरे देश में फर्क है यही। हिंदू मुस्लिम सिख हैं और कौम के लोग, एक दूजे से नफरत के नहीं पालते हैं रोग। भाईचारा समेट चले फर्ज है यही, दुनिया और मेरे देश में फर्क है यही। कल कल बहती नदियां और लहराते हैं खेत, छम छम छम बारिश में खूब मोर नाचे रे। कोई बिछड़ न जाए हमसे दर्द है यही, दुनिया और मेरे देश में फर्क है यही। ये पंक्तियां लिखी है विशाल कुमार दुसिया जी ने। आइए आगे चलते हैं और आपको सुनाते हैं एक वॉइस नोट जो हमारे पास भेजा है देवदत्त शर्मा जी ने।
1: मैं देवदत्त शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार एवं छायाकार अंबाला, FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का श्रोताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। रेडियो वितस्ता परिवार दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करे, हमारी यही शुभकामनाएं। जय हिंद।
2: ब्रिटिश द्वारा गुलाम रहने के बाद जब भारत ने आजादी की तरफ कदम बढ़ाया, पूरे देश में एक झंडे ने एकता की लहर पैदा की, जिसने लोगों में भाईचारा को बढ़ावा देने के सफल कार्य किया। कई बदलाव से गुजरने के बाद 22 जुलाई 1947 को भारत का वर्तमान झंडा मिला और उसको सबने अपनाया। इस पर्व पर राष्ट्रध्वज को नमन करें, जो देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है और नागरिकों के सम्मान और गौरव का भी प्रतीक है। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना।

कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है।

FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हर्षोल्लास से हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। वंदे मातरम।

0: जी हाँ, आज हमारा देश आजाद है, हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, देश उन्नति पर है, बहुत सारी योजनाएं लागू हैं जिससे देशवासियों को बेहद लाभ हुआ है, जिसमें खास तौर पर सरकारी काम का ऑनलाइन होना या यूपीआई पेमेंट्स का चलन बढ़ना और बहुत सारे। देश की आजादी का श्रेय जाता है उन वीरों को जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, अपने प्राणों की आहुति दे दी या जो हमारे सीमाओं के प्रहरी हैं। हम चैन से सोते हैं क्योंकि वो सीमा के प्रहरी हैं, और उन सभी वीरों को भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही नमन उन शहीदों का जिनके वजह से हम आज आजाद है।
1: जिस देश का कण कण सोना है, जिस देश की नारी देवी है, जिस देश में गंगा बहती है, उस देश को भारत कहते हैं। जहां भाईचारे का नियम है, जात पात का भेद नहीं है, उस देश को भारत कहते हैं। जहां नभ से भू का नाता है, जहां धरा हमारी माता है, जहां सत्य धर्म मन बाता है, उस देश को भारत कहते हैं। नफरत बुरी ना पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये सबका वतन है संभालो इसे।
2: मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।
1: प्रोग्राम की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, आओ आजादी के इस पर्व में अखंड भारत का नारा बुलंद करते हैं, अनेकता में एकता वाले मेरे देश व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम का अंत मैं कुछ लाइन्स के साथ करूंगी। उन्नति पथ पर चक्र अनवरत चलता हुआ ना ठहरे, फर फर करता शुभ गगन में सदा तिरंगा लहरे, सदा तिरंगा लहरे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
0: जी हाँ, हमें आशा है कि आपको ये हमारी आज की प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 7056413010 पर। मुझे दीजिए इजाजत, एक बार फिर हमारी ओर से, मेरी ओर से, किडनी की ओर से और समस्त रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से, वेथ थिएटर ग्रुप परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

बोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी,

वासी जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ठीक खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठा के दस दस को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते हैं, खुश रहना।

हैं, अब हम तो सफर करते हैं, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाना उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद

खींची लकीरें, इंद्रधनुष की धूप, रेतीले आशियाने, वहमो गुमा की बुनियाद पे खड़े, उम्र के इस पड़ाव पे तुम्हारे लौटने की उम्मीद सी जगी है।

जब दोराने सफर पीले पत्तों के मौसम में तुम्हारी मासूम मुस्कान भरी अदाएं शामिल हों। ए उर्गो मत जाओ यूं ही हमें छोड़कर बेवजह, कभी कभी साथ तो चले इन काली घटाओं के हमराह, अपनी नींदों के बादल शायद भीग जाएं।

मौसम है सर्द, बर्फीली हवाओं का एहसास, खामोश वादी में माजी कुछ कहना चाहता है, मुझको मुझे से अलग करना चाहता है। रूह की फरियाद यहां सुने कौन, क्या बीते पल लौट आएंगे, क्या समय की इन तेज धाराओं से हमें भी गुजरना होगा, साथ चलने का वादा निभा न सके, पास रहने की हसरत लिए बैठे हैं।

जाने ये कौन मेरी रूह को छू कर गुजरा, हमेशा मेरे साथ रहते भी कभी मेरे पास न रह सके। जाने ये कौन इन गुप अंधेरों में अपनी नर्म नाजुक मुलायम उंगलियों से मेरे बालों को सहलाते गए। देर रात तक मुझे अपने आंचल में छिपाते गए। माजी की यादें सुनाकर रुलाते गए। कटा कटा सा जीवन धुंधले ख्वाबों के आगोश में तुम्हें तलाशने की नाकाम कोशिश, पर ये ख्वाब बनते हैं शायद टूटने के लिए, हाँ सिर्फ टूटने के लिए।

मैं कई युगों से बैठा हूं, चांद से कोई उतरा नहीं। तुमने जो कहा था आऊंगी, तुम्हारे चौखट से गुजरूंगी, रखूंगी कदम दहलीज पर, तुम्हें आवाज दूंगी, बुलाऊंगी और ले जाऊंगी अपने साथ दूर दूर बादलों के उस पार, जहां मौजूद हैं हमारी बस्तियां, हैं वहां हमारे अपने तुम्हारे ही तरह। पर बैठा हूं कई युगों से इंतजार में, लेकिन चांद से कोई उतरा

बरसती बादल, झूमती हवाएं, भीगती मुस्कान, ये खूबसूरत सुबह जीवन संघर्ष की डगर पर गामजन, उम्मीदों का लिबास पहने हुए, हसरते ही किसी का साथी ना छूटे। कोई किसी की जज्बात से ना खेले, एहसास मोहब्बतों का यूं ही बरकरार।

जाने किसकी तलाश उनकी आंखों में थी, आरजू के मुसाफिर भटकते रहे। जितने भी वो चले उतने ही बिछ गए राह में फासले। ख्वाब मंजिल थे और मंजिलें ख्वाब थीं, रास्तों से निकलते रहे रास्ते, जाने किस वास्ते आरजू के मुसाफिर भटकते रहे।

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाओं में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे।

सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा के पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाहा सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी। सच तो ये है कसूर अपना है।

जी श्रोताओ, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। आज का दिन बहुत ही खास रहा हम सभी देशवासियों के लिए, क्योंकि हर्षोल्लास के साथ हमने आज स्वतंत्रता दिवस मनाया, और एक बार फिर सभी श्रोताओं को देश विदेश में और सभी अम्बाला वासियों को और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा रहा, और हमने आपको आज कोशिश की कि सराबोर रखें देशभक्ति गीतों के साथ, और इस आज़ादी के दिवस को हम मनाएं। आज़ादी हमारे लिए क्या मायने रखती है वह हम सब जानते हैं, पर फिर भी हर जगह पर ये आज़ादी उपलब्ध नहीं है। और अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:51। FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता आप सुन रहे हैं, और मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त और हमनवा भारत सोपोरी। सबसे पहले आज मैं आपके साथ एक खास संदेश शेयर करना चाहूंगा, और साथ में आज हम बात करेंगे आजादी के दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर हम विशेष तौर पर बात करेंगे। पर उससे पहले एक खास संदेश आप सभी श्रोताओं के लिए। हंसी जो बिखेरे हर तरफ खुशियों की बहार, हंसी जो बिखेरे हर तरफ खुशियों की बहार, आवाज जो बने हर श्रोता के दिल का करार, ऐसी शख्सियत हो तुम अनु, हर पल हो तुम्हारी आवाज, जन्मदिन मुबारक हो मिले जीवन में हर बहार। आज 15 अगस्त 2026 को जन्मदिवस है अंबाला कैंट से अनु का, जो FM 90.0 MHz की नई आवाज है। रेडियो वितस्ता की रौनक हो तुम, हर आवाज में मिठास घोलती हो तुम। रेडियो वितस्ता की रौनक हो तुम, हर आवाज में मिठास घोलती हो तुम। यूं ही मुस्कुराते रहो हर साल, यूं ही मुस्कुराते रहो हर साल, खुशियों से भरा रहे तुम्हारा हर साल, खुशियों से भरा रहे तुम्हारा हर साल। मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और टीम रेडियो वितस्ता की ओर से आपको जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। साथ ही आपको जन्मदिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं आपके माता पिता श्री दिनेश कुमार जी, श्रीमती मनदीप कौर जी और आपके भाई देव कुमार जी। उनकी तरफ से भी आपको हैप्पी बर्थडे और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत और ढेर सारी खुशियां प्रदान करे। हैप्पी बर्थडे टू यू अनु। श्रोताओं, आज 15 अगस्त का ये पावन अवसर हम सभी के दिल में देशभक्ति की एक नई ऊर्जा भर देता है। पूरा देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े गर्व और उल्लास के साथ मना रहा है। आइए आज के इस विशेष प्रसारण के समापन से पहले स्वतंत्रता के इस अमर पर्व के मोल को एक बार फिर से महसूस करें। स्वतंत्रता दिवस त्याग, परिश्रम और अमर बलिदान की गाथा। 15 अगस्त 1947 की वो बोर सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि दुनिया की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर एक नए भारत के जन्म की हुंकार थी। आज हम जिस आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत हमारे पूर्वजों ने अपने खून, पसीने और अटूट परिश्रम से चुकाई है। ये आजादी हमें किसी उपहार में नहीं मिली, इसके पीछे लाखों देशवासियों का कड़ा परिश्रम, अनगिनत यातनाएं और महान वीरों का सर्वोच्च बलिदान छिपा है। कुछ बिंदु आपके सामने रखूंगा बलिदानों की अमर ज्वाला। मां भारती के आंचल को आजाद कराने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देकर देश के युवाओं में ऐसा जुनून भरा कि ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिल गई। चंद्रशेखर आजाद की वो प्रतिज्ञा कि हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे, आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति का जज्बा जगाती है। दूसरा, सत्याग्रह और अटूट परिश्रम।
महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा, सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन ने दिखा दिया कि जब पूरा देश एक साथ खड़ा होता है तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी झुकाना बहुत आसान हो जाता है। दांडी मार्च की वो मीलों लंबी पैदल यात्रा हो या भारत छोड़ो आंदोलन का हुंकार, देश के कोने कोने से बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों ने दिन रात एक करके इस लड़ाई को अपना सब कुछ सौंप दिया। अनाम नायकों का योगदान, हम उन अनगिनत अनाम शहीदों को कैसे भूल सकते हैं जिनके नाम इतिहास के पन्नों में भले दर्ज ना हो सके हों, लेकिन उनकी शहादत इस आजाद भारत की नींव में हमेशा अमर रहेगी। कालापानी यानी सेलुलर जेल की अंधेरी कोठरियों में असहनीय यातनाएं सहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग हमें याद दिलाता है कि यह आजादी कितनी अनमोल है। आज जब हम अपने तिरंगे को आसमान में लहराते हुए देखते हैं तो हमें यह संकल्प भी लेना होगा कि हम अपने वीर जवानों और स्वतंत्रता सेनानियों के इन सपनों के भारत को और अधिक समृद्ध, अखंड और सशक्त बनाएं। टीम रेडियो वितस्ता की ओर से हम उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। टीम रेडियो वितस्ता की ओर से शुभकामनाओं का संदेश यह है कि आज इस महान पर्व के शुभ अवसर पर रेडियो वितस्ता की पूरी टीम की तरफ से आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। हमारे अध्यक्षा किरणी दास की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश यूं ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। मेरे यानी भारत सोपोरी की ओर से आप सभी के जीवन में यह आजादी का पर्व ढेर सारी खुशियां और समृद्धि लेकर आए। कृष्णा की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आइए मिलकर अपने देश की आन बान और शान को बनाए रखें। उन्होंने आप सभी श्रोताओं के लिए कुछ पंक्तियां भेजी हैं। पंक्तियों का शीर्षक है एकता में अनेकता। पंक्तियां यूं है, सच ही में बहुत खास हैं हम, मानवता, निष्ठा और प्रेम का विश्वास हैं हम, युगों से लहराते आए परचम अपनी विजय गाथा की, खुद में ही अपना स्वर्णिम इतिहास हैं हम, खुद में ही अपना स्वर्णिम इतिहास हैं हम। जी दोस्तों, हमारे साथ अनु की ओर से भी आप सभी श्रोताओं के लिए प्यार भरा प्रणाम और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ये था आज का विषय और आज की शुभकामनाएं आप सभी के लिए, और आप सभी का प्यार और स्नेह हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। और हम आप सभी श्रोताओं को वादा करते हैं कि जितना विश्वास आप हम पे रखते हैं उससे ज्यादा हमें आप पर है। आपका प्यार और स्नेह हमें ऊर्जा देता है और हर दिन हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। आज मैं आप सभी के लिए खास पंक्तियां लाया हूं और सभी पंक्तियां आप सभी के लिए समर्पित। पंक्तियां यूं है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी है। फहराएंगे तिरंगा अब नीले आसमान पर, फहराएंगे तिरंगा अब नीले आसमान पर, भारत का नाम होगा सबकी जुबां पर, ले लेंगे उसकी जान या देंगे अपनी जान, कोई जो उठाएगा आंख हमारे हिंदुस्तान पर, ले लेंगे उसकी जान या दे देंगे अपनी जान, कोई जो उठाएगा आंख हमारे हिंदुस्तान पर। इसी जज्बे के साथ आज के प्रसारण को विराम देने का वक्त आ गया है। और जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 16 अगस्त 2026 रविवार को हमारी सभा की शुरुआत होगी। सुबह 5:58 पर वंदे मातरम से हम शुरुआत करेंगे, लाएंगे एक सुविचार और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे भक्ति संगीत और साथ में आप सुनेंगे शब्द और गुरबानी भी। 7 बजे हम आपको ले चलेंगे गांव फ्लेल माजरा अंबाला के गांव में, जहां हम लोगों से बात करेंगे, कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी। और 8:30 बजे आप सुनेंगे किन्नी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 4 और इसका शीर्षक होगा डिजिटल डिटॉक्स। और
आठ बजे से पहले 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुमन कल्याणपुर पर पेश करेंगे रमेश मरहटा। 9:30 बजे मिले जुले गीत आप सुनेंगे। 10 बजे इनसे मिलिए, हमारे साथ होंगी श्रीमती रेनू मेहता। संगीत की सभा जारी रहेगी। 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम में गजल और 7 बजे सरगम एपिसोड 1 पेश करेंगे आरजे किरनी। और 8:30 बजे हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मरहटा। और कल की कड़ी है कब आओगे तुम। ये था विवरण आज के कल के कार्यक्रमों का, और आप अपना फीडबैक हमें भेजिएगा आज के हमारे प्रसारण पर हमारे नंबर पर 7056413010 पर। नंबर एक बार फिर 7056413010। कल तक के लिए शुभ रात्रि, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।